क्या कोई अमृत हैणी नफरत जी कोई जहर नहीं, प्यार जिहा कोई अमृत हैणी नफरत जही कोई जहर नहीं, घर वर्गी सरदारी हैणी ते दुनिया वर्गी सैर नहीं, प्यो वर्गा सिर हथ नहीं ते मां वर्गी कोई पैर नहीं, की शक्कर जिहा नाता हैणी ते इट कुत्ते जिहा वैर नहीं, रलिया वर्गा सीगा हैणी ते खिलर गया दी खैर नहीं, खिलर गई पंड तूड़ी वाली हवा लग्या उड जानी, जे गल विगड़ गई मुड़ के सूत नहीं आउणी, जे गल विगड़ गई ते मुड़ के सूत नहीं आउणी। सत श्री अकाल जी दोस्तों, मैं तुहाडा होस्ट तुहाडा दोस्त रेडियो प्रोग्राम सबरंग दा सूत्रधार डॉक्टर दर्शनदीप हाजर हां। सोमवार तो लैके शुक्रवार तक पेश हुंदे रेडियो प्रोग्राम सबरंग नूं लैके, जिस नूं तुसीं सुनदे हो रात नूं 10 बजे तो लैके 11 बजे तक 5:30 AM दी फ्रीक्वेंसी दे उपर, जिथे तुसीं हुणे हुणे सुनिया रेडियो प्रोग्राम उड़ान प्रभ संधु दे नाल। और ये सिलसिला लगातार सवेरे 4 बजे तो शुरू हो जाता है, ते वक्रे वक्रे दोस्त मित्र भैन भरा अपनी अपनी समर्था दे मुताबक जिहड़े जिहड़े भी वक्रे वक्रे प्रोग्रामां नूं होस्ट करदे ने, तुहाडा मनोरंजन भी करदे ने, देश विदेश दीआं खबरां दे नाल अपडेट भी करदे ने, और बहुत अच्छियां अच्छियां शख्सियतां दे नाल तुहाडा रूबरू भी करवाउंदे ने। सो साडा भी टाइम हुंदा इस वेले 10 बजे तो लैके 11 बजे तक, ते साडी भी कोशिश हुंदी है कि असीं पंजाब पंजाबी और पंजाबीयत नूं समर्पित इस प्रोग्राम दे विच अपने सभ्याचार अपने विरसे और अपनी पंजाबी मां बोली दी गलबात करके तुहानूं उत्थों दे नाल थोड़ा बहुत जोड़न दी असीं कोशिश करिए। सो सबरंग रेडियो जिस नूं पेश कीता जांदा है विश्व पंजाबी सभा दे द्वारा, विश्व पंजाबी सभा दे द्वारा रेडियो प्रोग्राम सबरंग दे नाल नाल तुसी पढ़दे हो ऑनलाइन पंजाबी अखबार, इस दी ऐप डाउनलोड करके तुसी पढ़ सकदे हो सवेरे रोज। VPS24.ca 24 घंटे 7 दिन चलन वाला IPTV चैनल दे पंजाबी सैक्शन दे विच जाके तुसी VPS24.hd भरोगे तां साडे IPTV चैनल दे नाल जुड़ जाओगे, जिथे तुसी सारा दिन बहुत अच्छियां अच्छियां पंजाबी दियां पुरानियां क्लासिक और नवियां फिल्मां भी देखोगे पंजाबी दियां, और उहदे नाल नाल विश्व पंजाबी सभा द्वारा जो जो गतिविधियां जिथे जिथे भी विश्व पंजाबी सभा दियां इकाइयां ने उन्हां सारियां दी रिकॉर्डिंग साडे कोले पहुंच जांदी है, ते असीं टाइम टू टाइम उस दे उपर अपलोड करदे रहिंदे, तुसीं देख सकदे हो। विश्व पंजाबी भवन ब्रह्मटन दे विच पंजाबी भैन भरावां दे लई आधुनिक सहूलतां दे नाल लैस इको एक ऐसा ऑडिटोरियम है जिस नूं तुसीं देखोगे ते देखदे ही रह जाओगे। सो हर वीकेंड दे उपर तकरीबन कोई ना कोई गतिविधि उत्थे ऑर्गेनाइज कीती जांदी है, जिस तरह कल भी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम असीं करके हटे हां, उहदी डिटेल मैं तुहाडे नाल कल शेयर कीती सी। हुण 9 अगस्त नूं बहुत वधिया 2 प्रोग्राम हो रहे ने, देखो 9 तरीक नूं 2 प्रोग्राम उत्थे सवेर तो लैके, एक प्रोग्राम सवेरे 11 बजे तो लैके 3 बजे तक है, शहीद उधम सिंह नूं श्रद्धांजलि देनी है। शहीद उधम सिंह जी की शहीदी दिन जिहड़ा ना जिहड़ा 31 जुलाई नूं सी, सो पंजाब सभ्याचारक मंच वल्लों जिहड़ा उत्थे मनाया जाणा उस नूं ट्रिब्यूट दित्ती जाणी, जिहदे विच बहुत सारे स्कॉलर जिहड़े पहुंचणगे और अपनी अपनी जो विचारधारा है, जो उधम सिंह दे बारे जो उन्हां ने पढ़िया है उसके जीवन के बारे और उसकी शहादत के बारे थोड़े नाल अपने विचार सांझे करनगे। इस प्रोग्राम के बारे कोई किसी ने जानकारी प्राप्त करनी हो तो 647-233-1527 647-233-1527 या 365-998-9801 365-998-9801 के उपर संपर्क करके कोई जानकारी लेनी हो इस प्रोग्राम के बारे तुसी ले सकते हो। दूसरा प्रोग्राम 9 अगस्त नूं ही शाम नूं 6 बजे दे करीब इंडियन काउंसिल ऑफ आर्ट्स और विश्व पंजाबी सभा दी कलैबोरेशन दे नाल करवाया जा रहा है शाम नूं 6 बजे। दोस्त मित्र भैन भरा जिहड़े क्लासीकल म्यूजिक दे विच असली म्यूजिक जिहड़ा हुंदा है ना, रूह दी खुराक जिहनूं असीं कहिंदे आ, इक तां हुंदा ना दगड़ दगड़ दगड़ गाने वजाणे वाला, इक हुंदा क्लासीकल म्यूजिक जिहदे विच गज़ल और क्लासीकल म्यूजिक भी तुसीं सुणदे हो। अगर ऐसा शौक ऐसा टेस्ट दोस्तां मित्रां भैन भरावां किसी का है उस वधिया
ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਮਦ ਹੋਏਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ, 437-226-8638, 437-226-8638, ਜਾਂ ਕਥੂਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 416-7091-4167-0090-00 ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੁਆਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਪਲੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ 647-367-5353 ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, 647-367-5353 ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਹੁਸਨੈਨ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਬਸ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਚੂੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਸ ਪਹੁੰਚਣਗੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੀਮੈਕਸ ਗੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ 416-525-7400, 416-525-7400।

0: टुटना में जावा कर्म कमा साइया।
1: वाह वाह वाह वाह हुसनैन जी, वाह कमाल, तुसी ते कमाल कर देंदे। तुसी जेड़ा भी विषय होए ओदा ना कोई कढ लेंदे हो, तुहाडा भी किड्डा क ग्रंथ तुहाडे कोल भरिया होया, सारियां चीजां तुसी लभ लेंदे हो। सो एक ए भी चीज मैं पुछया सी कि जेड़ा निमे कत्ता प्रीता नाल चरखा, चन्नन दा गाने दे विचो चन्नन दा बोलदी है ते, लेकिन ये चन्नन है कि चंदन लकड़ा है, ये मेरे दिमाग दे विच आई नहीं। मैं को ध्यान सुनिया तो ध्यान नाल सी चन्नन शब्द ही बोलदा सी,
0: किते चन्नन ये ना क्या गया हो कि जिन्हें चरखा दिता है उन्हों किते
1: ओदा ना
0: चन्नन
1: चन्नन होवे
0: हाँ
1: किते,
0: जी चन्नन ना
1: नहीं,
0: तशबीह दी
1: वो
0: गई
1: यार
0: हो।
1: वो कला चन्नन थोड़ा चरखा देने वाला होंदा, और भी बड़े दोस्त मित्र वक्र।

0: शादी दी मूवी बनवाउन लई या रिंग सेरेमनी ली वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन लई याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने बुकिंग लई आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-903-1251 416-930-1251
1: टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश कर देने पंजाबी विरसा 2026
2: ओए सावन चढ़िया ती
1: टोरंटो शो संडे 9 अगस्त नो
2: दुनिया मेले जांदी
1: थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो

0: पापा दे वीजे री सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

परम पुष्प परमेश्वर के नामों का सुना जिसने नाम उठ आश्रय ना आगाज दुनिया दी हरक्षा दे। उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा, चढ़दी कला वाला निरपाऊ निर्वैर रहेगा, मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रहेगी, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे। तो एक बार फिर तो पॉजिटिविटी का दूसरा नाम रेडियो वास, चढ़दी कला का दूसरा नाम रेडियो वास में मैं शामिल अमनदीप सिंह बनीपाल। ट्रैक 6 के उत्ते जिथे इमरेट की फ्लाइट जी है बाय बाय कर लगे धरती को, कि धरती को छड़ के रिस्क लैन लगे। जे मैं थोड़ी सिंपल भाषा च कहाँ, जिवें तुसी सारे मैनू मिलदे हो, थोड़ी सिंपल भाषा च मेरे ऑफिस के अप्रोच ही हुण नंगूगी भजन लगी है, उपर नोड़न लगी है। यानी कि धरती ते खड़ी सी फ्लाइट, इहदी कोई कदर नहीं सी, पर जो हवा चुड़ूगी इहदी कदर उदों पैणी हैगी है, उदों ही इहने रिस्क लैणा हैगा। तो रिस्क भावें कुछ परसेंट हुंदा, पर समझदारी ना, यानी कि पूरी टैक्नीक दे नाल किद्दां उड़ना, किद्दां उतरना, कित्थे किवें एयर दा जिहड़ा हैगा स्पेस किहड़ा होगा, हाइट किन्नी होगी, तो स्पीड किन्नी, सारा कुछ इहदे विच इनवॉल्व है। नहीं कि उइयों उड़न लग गई बस तो थले डिगी, लाई बेकदराना यारी टुट गई तड़क करके, वाला कम नहीं है। तो दूसरे पास यह है कि समुद्री बेड़े खड़े ने खूंजे ते लगे तो बड़े शांत जे नज़र आते हैं, पर अशांत समुद्र दियाँ लहरों चीरते हुए लंघते ने विचों, ते लंघ के पड़ा तक पहुँचते हैं। थोड़ा सौरा माल पानी जो खाने पीने सब चक चक लिया ने समुद्री बेड़े। सानू लगता कि पानी च बड़ा डर लगता, सानू बड़ा लगता कि हवा च बड़ा डर लगता, पर यह रिस्क नूं कढ़दे ने ते तां ही इहनां दी वैल्यू बनती हैगी है। जिंदगी कुछ इसे तरह की है कि तुसी कुछ पाउणा है ते कुछ गवाउण लई जरूर तैयार हो, पर साडी आदत है कि असी प्रॉफिट लई बिजनेस करदे हां, जे लॉस हो जाए तां असी नाराज़ हो जांदे हां, गुस्से हो जांदे हां, असी शिकायतां करन लग जांदे हां, किसी दा कसूर लभण लग जांदे हां, किसी ते इल्जाम थोपण की कोशिश करदे हां। पर मैं देखिया कि कम दिलिया नूं दिल ना परिया नूं परदे या खुदा सब बेकरियां नूं करदे, हर सुहागण दा जिंदा रहे सुहाग, उम्र बीती जा रही नूं वर दई बेड़िया तो झांझरा चु स्वरे मुक्त कैदी कस्बियां कर दई, सारिया मुल्कों बख्शी अमन तू बुद्ध ते खाक चिरे रोशन कर दई। डॉक्टर जगतार जिते कहते हैं कि बेड़िया तो झांझरा चो इस बरे मुक्त कैदी कस्बियां कर दई। सो मुक्त कैदी कस्बे की है, साडा मानसिकता, साडा मन, जिते सानू लगता कि मैनू सब कुछ पता है तो मैं ये करूँगा। अज इंटरनेट का जमाना पीक के उत्ते चलता पाया, मेरी सोच है कि इस तो बाद हुण कुछ नवा आऊगा, ये खत्म हो जूगा, क्योंकि हरेक आदमी जज बनया हो, हरेक आदमी वकील बनया हो, हर आदमी खड़ा किसी प्रधानमंत्री क्वेश्चन कर रहा है, तो हर बेरोज़गार खड़ा इंस्टीट्यूट्स नूं गालां कढ़ रहा जिथे उन्हें काम करना जां कीता हैगा उन्हूं गालां कढ़ रहा हैगा। सो ये सब कुछ चल रहा दुनिया दे विच, ते इहदे विच मानसिक बुद्धि जिहड़ी है जिहदे नाल आपां कहिंदे ना हे सच्चे पातशाह जिहड़ा हैगा मन नीवा मत उची कर राखा आप वाहिगुरु, अरदास च असीं कहिंदे आ मन नीवा मत उची कर राखा आप वाहिगुरु। बहुतात आपां अरदास ही भुल गए हैगे किवें आ, सानू काली हुंदी आ, हिल रहे हुंदे आ खड़े कि कदों खत्म होऊ, कदों फिनिश होऊ। जदों तुसीं एक एक शब्द चक हे प्यारे सतगुर सच्चे पातशाह सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे, जो तेरे नाम की गल कर, तेरी महिमा की गल कर, जो तेरी ओट की गल कर, तेरे आसरे की गल कर, तेरा तेरा तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के। सो जिथे इस ओट की गल चलती है, उस महिमा की गल चलती है, उस सतगुर सच्चे पातशाह अगे असी अरदास करते हैं कि सही प्यारे मेल जिन्हें मिलया तेरा नाम चिता, यानी कि वो लड़ लगे हो किसी पासे, कि आवारा गऊं जिहड़ियां सड़कां ते घूम रही ने उन्हां वर्गे ना होण, ते जिहड़ियां गऊं कीलियां ते बन्नियां होईयां ने तेरा तेरा तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के। वह गऊं का मुल पैंदा मंडियां दे विच, लोग मंगते ने लखां लखां करोड़ां रुपया दे के उन्हां नूं मंगते ने, ते जिहड़ियां सड़कां ते तुरियां फिरदियां उन्हां ते डंडे पैंदे ने। इसलिए कहिंदे सही प्यारे मेल ते जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे। रिवाज में मैं अमनदीप सिंह बनीपाल एक बार फिर तो आप सब का हार्दिक स्वागत करते हुए चलते हैं जी खूबसूरत जी सवेर के वाल, जिस विच असी तुसी और CHLO M530 डायल है डिजिटल फ्रीकुएंसी राही इस समय पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यू जर्सी तक तुसी सानू सुन रहे हो, और तुसी सानू ज्वाइन करना यानी कि अपने इस प्रोग्राम नू ज्वाइन करना, जिस राही तुसी एक मिनट के विच तकरीबन 80,000 तो 1,25,000 बंदे तक पहुँच जाने हो। ये यूट्यूब दे व्यू नहीं है, इंस्टाग्राम दे लाइक्स नहीं है कि लाइक आए हुए ने 20, शेयर होए ने 5,000। मैं एक एजुकेशन थोनू देनी चाहना, मेरे को एक नंबर आ, कोई भी बंदा टोरंटो दे विचों
ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰੋ ਔਨ ਏਅਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ 1200 ਰੁਪਏ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਨਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੋਲੋਅਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਈਏ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣਗੇ ਜੇ ਸਟਾਰ ਜੇ ਦਲਜੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਬਸ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਈਏ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਸੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗੂਗਾ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ, ਬਠਿੰਡੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ M530 ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰੇਕ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਮਚਿਓਰ ਕਲਾਇੰਟ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੇਮ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੰਚਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਚਿਓਰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਸੀਅਰ। ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ 416-518-3200 416-518-3200

0: आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।

0: कल ना एक मुंडे ने मेरी बड़ी बेइज्जती की थी।
1: हाँ, ओ कदा
0: ओ मैंने पूछन लग गया भी तेनू गाना आंदा है।
1: अच्छा, एदे विच नाले अपमान वाली कड़ी गल हुई यार, सिद्धी जी ते गल पुछी उहने।
0: पर उहने काफी देर पहला मेरा गाना सुनन तो बाद सवाल किता ना।
1: हाँ, तेनू फिर सच्ची गाना आंदा है?
2: फिट्टे मुँह तेरे।

0: रात आ मैं छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होण ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी करदे ने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालां तो तुहाडी सेवा विच।
0: भैया ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
1: कॉल करो 905-874-9878।
2: ओ अज तां कमाल ही होगी, घर वाली कहंदी किचन च रोटी ओदों ही बनू जदों नवे अप्लायंसेस आउणगे। मैं गया लाइन इक गल, उसे वेले गड्डी चक्की ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे मूरे ले जा खड़ी करती।
3: जी हां, एन्ना ही सौखा है अपनी किचन नु एक नवा रूप देना। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलणगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते। फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, लॉन्ड्री सेट, जो मर्जी ले जाओ। 801 बोवे ड्राइव नियर चकूजी, 905-450-2888।
4: जी दोस्तों, तुसीं जुड़ चुके हो रेडियो प्रोग्राम सारंग दे नाल। मैं तुहाडा होस्ट एंड दोस्त राजवीर बोपर। प्रोग्राम दे विच साथ बने रहेगा 1 घंटे दा, 2 बजे तो लेके 3 बजे तक हाजिरी।

0: वाले रेडी हो जाओ बाय योर टिकट्स एट ticketmaster.ca और कॉल 6479648573।
1: चलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो। पिछले 30 वर्षों तो तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका। पहला तुसी सुनदे सी मंडे टू फ्राइडे 4 to 6, लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3 to 6 शामी, जाने के देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है ते नाल तुसी दुपहरे सिरड़े 1 to 4 शाम दे 4 बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पाउंदे हो। देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी हो अफोर्डेबल पैकेज लई आज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381 416-457-3381 जां तेजिंदर सिंह सिद्धू देना कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551। देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो 7 days a week तुहाडे अंग संग। चलो AM

0: 1630.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Rocky, तू अपने insurance किस तो करवाना यार?
2: भाई कल्ला मैं नहीं, अपनी community का हर बंदा insurance expert मोना मेंगी जी को करवाने नहीं।
1: वाह, यार number तो दही मोना जी था।
2: हाँ जी, तुसी भी note करो, insurance कोई भी होवे,
3: insurance for you दी मोना मेंगी जी।
2: जेने life insurance, critical illness insurance, super visa insurance अते हर तरह दी insurance ले ही परोसेमंद नाम है। उन्हें call करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी from insurance for you
2: 416-509-1500

0: Sound Live and Cellular Point present Ami Will live in Toronto. August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valley, ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
1: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तां सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 6-457-3381
1: नाले। जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
4: बिजनेस नु प्रमोट करन लई देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो एंड टीवी थोड़े अंग संग है 24 घंटे सतो दिन। हुण तक देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो हजारा ही बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुके है ते करवा रहा है। इम्पॉसिबल इज नथिंग। तुसी भी अपने बिजनेस विच वादा करन वास्ते देश प्रदेश रेडियो दा लाइव ऑन लोकेशन फ्राइडे सैटरडे करवाओ। फॉर बुकिंग कॉल सजिंदर सिद्धू एट 416-725-2551।

0: सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015।
1: दुनिया दे किसी भी हिस्से विच उड़ान भरन तो पहला एक नाम याद रखो, कोमल ट्रैवल एंड टूर्स। डेस्टिनेशन बेडिंग करनी है, शिप क्रूज ले जाना है, या फिर किसी आइलैंड ते हॉलीडेज वास्ते बुक करना है पैकेज, ता कोमल ट्रैवल। इंडिया पंजाब ले डायरेक्ट फ्लाइट बुक करने वास्ते हुणे कॉल करो कोमल ट्रैवल वाले नु 905-238-7011 905-239-7711। कोमल ट्रैवल एंड टूर्स हाड़ियां कारां दी तसल्ली बख्श मरम्मत लई ANJ ऑटो रिपेयर बोल्टन दे विच हन। हर मेक ते मॉडल दी कार दी रिपेयर कीती जांदी है। सेफ्टी इंस्पेक्शन, फ्री एमिशन टेस्ट, न्यू ते यूज्ड टायर पवाओ, रस्ट प्रूफिंग दा काम, ऑयल चेंज, ब्रेक जॉब, ट्रांसमिशन, इंजन दा कोई भी काम होवे, अज ही अपनी कार नूं लेके आओ। हाईवे 50 ते मेफील्ड दे नेड़े नंबर 91 हेली रोड और होम डिपो दे नाल अज ही कॉल करो परमिंदर सिंह होरां नूं 905-857-75-96 905-857-7596 ANJ ऑटो रिपेयर, जिहड़े कि बोल्टन अते ब्रैम्पटन दे बॉर्डर ते ने।